0: चेक
1: चेक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
0: अभिषेक रेडियो सारंग
1: टेस्ट टेस्ट
0: हेलो
1: या टेस्ट टेस्ट टेस्ट
0: हेलो टेस्ट
1: या ओके ओके फाइन फाइन
0: हेलो चेक
1: टेस्ट टेस्ट टेस्ट
0: हेलो
1: या थैंक यू थैंक यू
2: अग्रोरा गोली दादे विक्रम आगे